रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे, किनारे पे आ

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी

भी रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-64-1800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी। Mixing in the house.

अब दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: Chinar beats with Harshadeepa only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

0: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM आप सबका वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी। जी हाँ, मजेदार शो व्हाट्स अप रेडियो चुनाव पर सिरे हट धड़काते रहो
1: जी।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम। आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो वासा। दोस्तों, फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया की किसी भी कोने में। जी हाँ, यू कैन लॉग इन टू www.radiochunar.com, वहां पर भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी। और इस फ्रीक्वेंसी पर जॉक्सिस के साथ मजेदार शो हुआ सबसे डायरेक्ट।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिडार 90.4 FM हर दिल।

0: Zeus.
1: Kom on, ayo.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
3: तो रेडियो चुनार की हर इस फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो में हूँ जॉक्सी सर ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चुनार वेदर अपडेट
3: जी हाँ, कैसा है मौसम आज का ये आपको बताते हैं रेडियो चुनार 90.4 FM वेदर अपडेट में। आप जानना चाहेंगे कि कुछ दिनों के लिए हीट वेव बताई जा रही है, सो मैंडेटरी है कि दोपहर का जो टाइम है जब हीट की इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है तो उस टाइम बाहर ना जाए बल्कि घर में ही पांव टिकाए। लू लग गई तो लू, जी हाँ लू आपसे बदले लेगी और गर्मी के चलते इंसानी दिमाग और इंसानी शरीर जो है पस्त हो सकता है। पस्त नहीं रहिए, जबरदस्त रहिए, फैन एसी का इस्तेमाल करते हुए इंडोर्स में बैठिए और वेंटिलेशन और हाइड्रेशन का ख्याल रखिए। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। वही बीच में बादल तो आशंका डालेंगे बट इट्स मोस्टली सनी फॉर टुडे। सूरज फायर नहीं वाइल्ड फायर बन के चमकेगा। अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स मॉडरेट पर, ह्यूमिडिटी 59%, विंड स्पीड 0 किलोमीटर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:32 पर, आज का सनसेट होगा 7:43 पर। जी हाँ, मेरी जो बात है सुनिए और उस पर गौर भी कीजिए कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर यू आर ड्राइविंग विद सेफ्टी एंड सेंसेस। और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्स, स्टीम रेडियो चुनार एंड वी केयर फॉर यू।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
4: द रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप।

वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है। व्हाट्सएप 90.4 FM रेडियो चुनार, हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप में आइए बात करते हैं रेलवे की। इंडियन रेलवे जो कि जाने जाते हैं अपनी एफिशिएंसी के लिए और साथ ही साथ जाने जाते हैं लोगों की जिंदगी को, सफर को आसान बनाने के लिए। लेकिन जब जनता जनार्दन की बात आती है तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरी जनता का सर आंखें नीचे हो जाती है। रेलवे की तरफ से किया गया जारी ये आंकड़ा हमें बताता है कि 1.27 करोड़ के पेट्रोल आइटम्स मिसिंग है इंडियन रेलवे।

0: एसी कोचेस से। अब ये होता है कि जब आप टू टायर थ्री टायर में जाते हैं तो आपको एक बैग पकड़ाया जाता है जिसमें बेडशीट्स वगैरह रहती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को जेब में डालकर बैग में पैक करके अपने साथ ले जाते हैं और फिर नुकसान ये सोचते हैं कि अरे सरकारी है, उड़ जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन नुकसान आम जनता का होता है।
1: प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी,
0: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कनों में वायरल था, व्हाट्सएप पर आ चुका है। मैं हूँ जॉक्स, सरे हक धड़काते रहो।
1: छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पिए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैक कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, टिप्पणी पे न करो टिप्पणी, तेरे जैसा कहां से मैं बस चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी प्यार तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी जलता है उनको मैं छांटता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं, उसके साथ मेरी कभी प्यार तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी जलता है उनको मैं छांटता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं, उसके साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं।

में मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: और दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट क्या था? द मोस्ट वेस्टेड ऑफ डेज इज वन विदाउट लाफ्टर। और इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन से रिएक्ट

0: कौन आया?
1: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 FM शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो श्री अमरनाथ जी यात्रा अपडेट। जी हाँ, सुमूह चल रही है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 लोकल एडवाइजरीज के साथ। सोनमर्ग कंफर्मिंग नॉर्मल ऑपरेशंस विद रेगुलर कॉन्वॉय मूवमेंट्स। 3 लाख से ज्यादा डिवोटी जो है ये यात्रा का पावन सफर संपूर्ण कर चुके हैं। वही वेदर से रिलेटेड आपको बताना चाहेंगे, मैक्सिमम 16 और मिनिमम 11 डिग्रीज रहेगा टेम्परेचर। कल के मुकाबले आज वेदर जो है अमरनाथ यात्रियों को बेहतर मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले दैट माउंटेन रीजन होने की वजह से हाईली अनप्रेडिक्टेबल रहता है वेदर, तो जो भी SOPs गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो जरूर करें।
2: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल

कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदिरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप

180 7178 1800 180 7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: 코너요.
1: 주스. 주스.
0: 어디 프리퀀시 하드하게 들고 예전 90.4 FM 엔조이 그래 마스터쇼 와서. व्हाट्सअप शो में वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन टॉपिक बताने से पहले याद दिला दूं आपको, बता दूं आपको कि इस धड़कन को धड़काते हैं आप। जी हां, धड़काने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए फॉलो शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, वही आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज, नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है, 888-9904-8899-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- और मिलूंगा जॉक ज्यूस, या आप सर्च कर सकते हैं ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो। शायर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं शायर के सब कुछ है लेकिन रेडियो चुनार पर जो शायरी के सेगमेंट चलते हैं मुझे बहुत

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है, शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

0: 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्स अप
1: जस
0: शो में आज का टॉपिक राइज ऑफ एआई, जिसके बारे में बात हो रही है। देखिए, एआई की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग एआई को कोसते हैं। वही अगर हम सही मायनों में देखें तो एआई कैन बी यूजफुल एज एनीथिंग अराउंड द ग्लोब। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो $15.7 trillion ग्लोबली बाई 2030 एआई इज प्रोजेक्टेड टू कंप्लीट दैट। और वही एआई मार्केट जो है बताया जाता है सरपास करेगी $800 बिलियन बाय 2030। और जो लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें बताना चाहूंगा 77% ऑफ डिवाइसेस आर करंटली यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ फीचर्स फ्रॉम एआई, चाहे वो एआई असिस्टेंट हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो या नेविगेशन एप्स। एआई का इस्तेमाल तो सब करते हैं। द काउंट इज 77% इन द वर्ल्ड। अब एआई कैसे सीखता है? हम ही से सीखता है। दैट वाज फ्रॉम 2017 टू 2020 जब एआई को हम ही ने सिखाया। और उसके बाद एआई ने सीखा किस तरह से टेक्स्ट करते हैं, क्या कुछ करना है, किस तरह से इंसानों के काम आ सकता है एआई। और आज हम वही मेजर एडवांसमेंट्स देखते हैं। हेल्थ केयर या मेडिसिन हो तो एक बूम देखने को मिला है। आज कोई भी इंडस्ट्री है कि बिना कारगर नहीं मानी जाती, चाहे ऑटोमेशन हो, एजुकेशन हो, हर जगह आपको एआई देखने को मिलेगा। आज तो कोर्सेज हैं जो करने जरूरी है बिकॉज एम्प्लॉयर्स वांट देयर एम्प्लॉयज टू बी एआई मास्टर्स। हाँ, कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिन पर असर तो पड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एआई इज क्रिएटिंग अ सफिशिएंट स्पेस। अगर आप एआई समझते हैं, एआई जानते हैं, एआई का यूज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, एक सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट देने के बाद वो अपना कैप्शन या अपनी थीसिस या अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं, और उन्हें पूछने पर भी नहीं बताते कि एआई है। अब हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अच्छा भी और बुरा भी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि वो एआई का इस्तेमाल किस तरह से करता है और क्या है चैलेंजेस एंड कंसर्न, उनके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ संजय दत्त और प्रियंका का ये ट्रैक फ्रॉम मूवी प्लान। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एमएम मैं हूँ जागरूक। शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04-904 इज द नंबर। रेडियो चुनार सही है मेरे यार।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: çözüyoruz.
1: Tamam ya.
2: Ciao, ben Joker Yılmazlar Show WhatsApp Mehmet Kasat İcaksız. Show WhatsApp Oraj Batory Rise of AI. Aaj ke WhatsApp Show ka topic aur hamare saath jude hain Sahil. Sahil ek dancer jo mujhse hoon aur RS Bora se hone ke baad Kupwara mein meri duty lagi hui hai. And I enjoy radio chunar too much. Aur jab bhi aana jana hota hai ya jab bhi time milta hai radio chunar sunta hoon. रेडियो चुनार पर WhatsApp शो मेरा फेवरेट है और आपकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है. थैंक यू सो मच दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे यार, मेरे जिगरी, मेरे प्यारे, मेरे आँख के तारे, आप सारे. जी हाँ, हर दिल की धड़कन को धड़काते आप एंड साहिल, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, इस प्यार के लिए धड़काते रहें. 8899-0409-04 इज द नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. Yeah, 8899-0409-04 number to use to me in the land, watch you do my sign in the land said. जैसा कि मैंने कहा, जब भी हम AI की बात करते हैं तो देयर आर बोथ द साइड्स, अच्छा पहलू भी बुरा पहलू भी. और वही अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ट्रैक्स के उस पर कि हम चैलेंज एंड कंसर्न्स की बात करेंगे. देखिए, जॉब डिस्प्लेसमेंट इज वन ऑफ द कंसर्न्स. वेल, AI इज प्रेडिक्टेड टू क्रिएट मिलियंस ऑफ न्यू टेक इन डाटा एंड सेंट्रिक रोल्स. वही अगर हम देखें तो न्यूमरस ट्रेडिशनल मैनुअल वाइट कलर जॉब जो है AI की वजह से डिसरप्ट हो गए हैं और रिस्किलिंग एफर्ट्स के चलते हैं बहुत सारे लोग अपने जॉब्स गवा चुके हैं या गवा सकते हैं. और वही अगर हम देखें तो AI मॉडल जो है वो हिस्टोरिकल ह्यूमन डेटा पर बने हुए हैं एंड उसके चलते कुछ चीज़ें एनहेंस करना, कुछ चीज़ें एम्पलीफाई करना या कुछ चीज़ों को सीधा बनाना, AI कैन डू दैट. सो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट.
0: यस,
2: अब डीप फेक AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ नहीं है आज. अगर आप इंस्टाग्राम पर ही देखिए, क्योंकि इंस्टाग्राम इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इंस्टाग्राम पर ही दिन बिताते हैं, रातें बिताते हैं और उसके चलते कितने सारी चीज़ें हैं जो हमें इंस्टाग्राम पर नकली देखने को मिलती है. आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं कि नकली है और AI की मदद से उन्होंने अपनी आईडी बना ली है. मतलब मैंने कोई आईडी बनाई AI मॉडल कर इस्तेमाल करके और लोग उसे असली समझते हैं या सोचते हैं कि भैया ये वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे पता है, मैं इसको फॉलो करूंगा, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो भैया AI था. वही AI का रेवोल्यूशन जो है म्यूजिक इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है. कितने सारे कंपोजर्स जो हैं इस टाइम बैठे बैठे मक्खियाँ उड़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज AI इज डूइंग बेटर जॉब. अब AI का इस्तेमाल करना या AI को जानना जरूरी हो रहा है. जिस तरह से पहले ज़माने में बहुत सारे लोग या गरस मुझे जूठा सा ए, बना चलावान छुसने ये फोन वन क्या चलावन ये फोन फोन, आज सबकी मजबूरी है. वैसा ही कुछ हुआ ऑनलाइन मनी ट्रांसफरिंग के साथ, एप्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे. कशीर मज अगर कशरन याद आए ये कैसा ऑनलाइन है दस दह रुपये थे, लेकिन आज सच में होता है. आज अगर कंस वनो दह रुपये सोच वन त्रावज ऑनलाइन दो रुपये त्रावज ऑनलाइन एंड इट्स बिकमिंग नेसेसिटी, इट्स बिकमिंग नॉर्मल डे फॉर एवरी वन. इट इज हाउ ह्यूमन्स आर इवॉल्विंग. लेकिन टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो कहा जाता है कि एक AI इमेज जनरेट करने में हजारों लीटर पानी इस्तेमाल होता है.

now that is what concern is. ek choti si percentage jo hum insano ke liye hai jo ki hame bahut lagti hai lekin mother nature agar apni par aa gayi na to insaan boond boond ko taras jayenge aur us par agar hum ye pani jo hai air wagaira mein istemal karne lage aur pani ki gillat ho gayi to aap samajh sakte hain aane wale future mein bisleri chodo nal ka pani peene ke liye taras jayenge log. अब ऐसा ना हो ये तो हम भी दुआ करेंगे. अब भी बस इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम इंसान कहीं मदर नेचर को इतना इफेक्ट ना कर दे कि मदर नेचर बदला लेने पर आ जाए. आजकल बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर लैंडस्लाइड्स, बादल फटना, बाकी चीज़ें. अभी पहलगाम में भी हुआ था ना. पॉइंट इज क्या ये नेचुरल फेनोमेना है या मदर नेचर हमसे बदला ले रही है. अब दिल तो दीवाना है भाई, किसी की नहीं सुनता फिलहाल. गाना सुनो क्योंकि दिल दीवाना है करीना कपूर और शाहरुख का भी. इट्स वन ऑफ द सीजलिंग ट्रैक्स फ्रॉम मूवी डॉन. जी हाँ, हर एक दिल प्यार का दीवाना है और हमारा दिल आपके प्यार का दीवाना है. यू स्टे हुक्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी. अगला सेगमेंट होगा आई फील गुड. I Feel Good is a show dedicated to the lovers of Western music. English tracks, Western music, aap tak pahunchane wale hain. Zara sa intezar, dete raho pyar. I'll see you on the other side, mere yaar. Main hoon Jaxus, sirahuk, dhadkate raho.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,

0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर छोटा लंदन
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Only on Radio Chennai 90.4.
4: I feel good.
3: A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ.

बीस और रुपीज शो चुना रिजर्व एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुना 90.4 FM। ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक बन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। पर हमेशा की तरह सो एक्साइटेड, क्योंकि ये देखिए जुमतुल मुबारक है और ख़ास दिन पे हम आपके लिए डिवोशनल म्यूज़िक चलाते हैं, नशीद, सूफियाना कलाम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के हम दुआ करते हैं कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हर एक इंसान, इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहे, हम यूँ ही एक दूसरे के काम आते रहे और यूँ ही हमारा साथ बना रहे। तो बात हो रही है और ढेर सारी बातें हम करने जा रहे हैं, तो आपका क्या है ख्याल मुझे बताइए। जी हाँ, क्या है वो ख्याल, क्या है आपका सवाल और क्या आप पूछना चाहते हैं और क्या आप कन्वे करना चाहते हैं, यानी कि आपका ओपिनियन क्या है। आपका ओपिनियन मैं तो बहुत ही ज़्यादा समझती हूँ और मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी कोई आवाज़ है, मैं वो आवाज़ पहुँचाती हूँ वहाँ बात जहाँ जहाँ तक पहुँचती है, रेडियो चुनार की आवाज़। अब बीट्स ऑन रिपीट तो है ही, शो टन और बीट्स है, वाइब है, ट्राइब है, एंटरटेनमेंट है, बट इन्फॉर्मेशन भी भरपूर है। और क्या रहेगा टॉपिक, क्या इन्फॉर्मेशन है, बस आपने तो फिर उसके लिए बस गाड़ी निकल पड़ी है और सवारी आप है और आपने भी बस मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि ये सफ़र अकेले काटा नहीं जाता।

जी हाँ, चिकरी चिकरी और बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. ये है दिल की धड़कन.

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: It's on repeat.
1: तो चुनाव बीज अब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम डी सारी बातें हो रही हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देखिए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और इन्फॉर्मेशन वो कि जो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है एंड स्पेशली जब हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हम सब के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है. एंड अभी के लिए जो हम कह सकते हैं नेशनल हाईवे बोथ साइड से अलाउ किया जा रहा है, टू वे ट्रैफिक है, आप आ सकते हैं जा सकते जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, बट बी केयरफुल. एंड हमें पता है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट हुई और अभी भी वो जारी है, 58 डेज की, 57 डेज की ये यात्रा जो है, ये तब तक आपके लिए जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी डिफरेंट है. अगर हम देखें तो हैवी मोटर व्हीकल्स जो है वो सुबह से शाम के 7:30 तक ही ट्रैवल कर सकते हैं नेशनल हाईवे पे, और लाइट मोटर व्हीकल शाम के 11:30 तक ट्रैवल कर सकते हैं. इसका थोड़ा सा हम सब ने ख्याल रखना है. और उसके अलावा अगर हम देखें तो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना, गलत जगह पर ओवरटेक नहीं करना, एंड कभी कभार मेंटेनेंस चल रहा होता है बैड वेदर कंडीशन के कारण, कहीं पर रोड पर हमें रोक दिया जाता है, सो उसमें कॉपरेट करना है. वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी कॉशियस, और हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कॉपरेट करना है क्योंकि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है और हमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है. और मुझे बताइए क्या चल रहा है, और अभी जब आप जा रहे थे गाड़ी में आ रहे थे तो क्या ऐसा अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस था, या सच में आप चाहते हो कि कोई ऐसी बात जब हम ट्रैवल करते हैं आपको बताना है, पहुंचाना है रेडियो चुनार के प्लेटफॉर्म के थ्रू. देखिए सिग्नल तो प्यार का ही होता है क्योंकि हमसे प्यार करती हैं हमारी गवर्नमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस का जो हाथ होता है ना कि दे रियली केयर फॉर अस, कि सिग्नल है पालन कीजिए इसका, गलत जगह पे ओवरटेक ना करें और ड्राइविंग स्पीड को फॉलो करके हमारी जान बच सकती है, तो वो प्यार ही हुआ ना. आप मुझे बताइए कि कितना प्यार है आपको इस चीज़ से जब कोई रूल्स फॉलो करता है. शो कैसा बन जाए 8999-0494 टेक्स व्हाट्सएप कीजिए. शो कैसा बन जाए आप सुन रहे हॉटस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: जुम्मतुल मुबारक, रेडियो चुनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम, हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

शो चुनाव बीट्स आप सुन रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM. आज जुमदुल मुबारक है और हम आपके लिए पेश कर रहे हैं नातिया कलाम, सूफी कलाम, नशीद. और ट्राई करते हैं इस मौके पर आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अपनी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए. और साथ में आपको बता दें कि शो पर आज बात हम करें वर्ल्ड इमोजी डे के बारे में. देखिए, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, और आज के ज़माने में अगर हम देखें 21st century से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, एंड आज बहुत सारे तरीके हम कम्युनिकेट करते हैं. बट आज इमोजी से हम बता देते हैं, यानी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इमोजी से सब समझ आते हैं कि इसका मतलब है क्या. तो आपका फेवरेट इमोजी कौन सा है और आप क्या जानते हैं इस दिन के बारे में, मुझे बताइए. शो कैसे बन जाए 8899-904-904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो टनार बीट्स का ऐसे बन जाइए. आज जुमदुल मुबारक है, हम आपके लिए सूफी कलाम, नशीद, नातिया कलाम पेश कर रहे हैं.

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

90.4 रेडियो चुनार पर आप सभी शो चुनार बीट सुन रहे हैं। आज जुमतुल मुबारक है तो हम आपके लिए डिवोशनल म्यूज़िक यानी नातिया कलाम, सूफी कलाम, नशीद चलाते हैं। 2 बजे तक हम ट्राई करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआओं में, इबादत में गुजारें, और जब भी आप हमें सुने तो याद रखें कि हम और आप मिलके इस सोसाइटी के लिए काम करते हुए हम एक सोसाइटी में एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे के लिए दुआ करें। और बात हो रही है शो पर वर्ल्ड इमोजी डे के बारे में। एंड व्हाट्स वर्ल्ड इमोजी? देखिए, आई बिलीव इमोजी से आज वो टोन ऐड होता है टेक्स्ट मैसेज जो है, कभी कभार वैसा एक इम्पैक्ट नहीं हमारे माइंड पे डालता है, लेकिन कभी ना कभी आपने ये देखा होगा कि जब हम सिंगल मैसेज करते तो उतना मज़ा नहीं आता, जब हम इमोजी उसके साथ ऐड करते तो अलग ही उस टेक्स्ट का मतलब ही बदल जाता है। यू आर एंग्री, अब एंग्री इमोजी उसके साथ ऐड करते हैं। यू आर हैप्पी, सो पीपल अंडरस्टैंड इट, कन्फ्यूज, जो भी है, यानी कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुका है जहाँ पर आप ग्लोबली शॉर्टलैंड जो है सर्व करते हैं, एलो करता है लोगों को डिफरेंट लैंग्वेज जो है कम्युनिटीज़ के, उसमें भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाते हैं, एक एंगेजमेंट बिल्ड होता है। इवन आज अगर मार्केटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स में भी इमोजीज़ का अगर देखें हम, बाव तो बढ़ चुका है, इंक्रीज हो गया रेट्स, यानी कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इमोजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे बताइए कि आप इमोजीज यूज़ करते हैं, आपका फेवरेट इमोजी कौन सा है। 8899-04904 पर आप टेक्स्ट, कॉल, व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि हम शो पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड इमोजी डे के बारे में, तो जल्दी से शो का हिस्सा बन जाइए। 8899-04904 टेक्स्ट, व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो जाए।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब सुनकर हमद बारी ताला नात रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: शो चुनार बीज आप सुन रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। एंड आज शो पे जुम्मतुल मुबारक है तो शो पे डिवोशनल म्यूज़िक चल रहा है आपके लिए। हम नातिया कलाम, सूफी कलाम और नशीद पेश कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस टाइम इबादत में आप गुजारे, आप अपना वक्त पूरा इबादत में दें और अल्लाह को अपने नेक अमल से, हमारे जो प्योर इंटेंशंस है उनसे अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि आपके साथ अपनी बातचीत बनाए रखें और ख़ासकर इस मौके पर हम आपके लिए डिवोशनल म्यूज़िक चलाते हैं, सूफियाना कलाम, नशीद और ख़ासकर बातें, और बातें आपकी हमारी, क्योंकि हम एक दूसरे के काम आते हैं और दुआओं में भी हमने एक दूसरे के लिए हमने दुआ करनी पड़ती है, हमने एक दूसरे को याद करना पड़ता है। एंड साथ में आपको बता दें कि शो पे आज बात हो रही थी वर्ल्ड इमोजी डे के बारे में और अब वक्त है कि आप अपनी पसंदीदा नशीद सुन सकते हैं। तो वो कैसे आप सुन सकते हैं, 8899904904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप अपना पसंदीदा नशीद सूफियाना कलाम सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। मैं फिर से बता दूँ, इट्स म्यूज़िक ऑन डिमांड। तो आप अपना पसंदीदा नशीद सूफियाना कलाम आप यहाँ पर सुन सकते हैं 8899904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो जाइए।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: जाती है जब आपके साथ शो हंगामा पे कौन जुड़ती है
1: आरजे असरा। और देखिए शो हंगामा की शुरुआत मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी इतनी खूबसूरत हुई है। एंड जी हाँ, शो शुरू हो चुका है हंगामा।
0: बिल्कुल, आप हंगामा शो पर असरा के साथ अभी बातें करेंगे। इनकी शुरुआत हुई है और ये भी स्टूडियो में वेट कर रही थी। देखिए जुमतुल मुबारक में हमें मौका मिलता है कि आपसी में जो चीज़ें होती है ना, गिले शिकवे, अल्लाह ताला से हम अर्ज़ करते हैं कि हमें किसी भी इंसान की, और वो कहते हैं ना कि गलत तरीके हाँ। से हम उनके साथ पेश
1: ना हो कुछ ना।
0: बिल्कुल, तो वही है कि जब हम आपस में मिलजुल कर बात करते हैं, ट्राई करते हैं कि हर चीज़ बुला लेते हैं, आज गिले शिकवे मिटा देते हैं, और बिस्मिल्लाह से, जैसे कि असरा ने बोला, खूबसूरत एक शुरुआत होती है। हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए अपनी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह से। पुरानी चीज़ों को, यानी कि वो जो हमारे अंदर बुक्स होता है ना, वो ख़त्म कीजिए और माफ़ी मांगिए, प्यार कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में तो हमें यही सिखाया गया है कि सही करोगे सही अजर मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: गलत करोगे उससे कुछ नहीं मिलेगा हमें ज़िंदगी में।
1: और मैं भी ऐसा मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ देर ठहर कर हमें उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी यू हैव टू बी दैट ग्राउंडेड, ग्रैटिट्यूड दिखाना कि जो हमारे पास चीज़ें हैं उनके लिए शुक्र करें, और जो हमारे पास नहीं है उनके लिए भी शुक्र करें।
0: बिल्कुल, और फिलहाल के लिए शुक्र तो हम कर रहे हैं अल्लाह का, दुआ करें एक दूसरे के लिए। जुमतुल मुबारक पे हम आपके लिए सूफी कलाम, नातिया कलाम बराबर 12:30 से 2 तक चलाते, और 2 बजे के बाद तो अभी तो शुरुआत हो चुकी है शो हंगामा की, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हम तो नहीं, मैं जा रही हूँ असरा आपके साथ, यही है बराबर 4 बजे तक। आप सुनते रहे रेडियो चुनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और

0: वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें, अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
2: Only on Radio Chunar 90.4 FM.

Welcome back to the show Hangama, only on Radio Sonar 90.4 FM. Show hai Hangama, jahan drama, information aur updates hoti hain. And this is the time for railway update. Aur aaj ki update ye hai ki every train is scheduled as per the summer timetable. Aur aap summer timetable avail kar sakte hain in person bhi at any of the stations, respective stations jahan aapka jo nearest station hai ya aap jahan ja rahe hain, wahan pe bhi billboards lage hote hain. You can take a picture with you. Yeah. अगर आप ऑन स्टेप चाहते हैं, ऑन डो चाहते हैं कि आपको वो समर टाइम टेबल मिले, देन यू कैन गो फॉर रेल वन ऑफिशियल ऐप. एक्यूरेट टाइम्स, एक्यूरेट ट्रेन लोकेशंस, ट्रेन बिटवीन स्टेशन से लेकर कौन सी अपडेट्स चल रही हैं अभी रेलवे, एंड दिस इज द ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप्स. और जो पटन और हामरे स्टेशन के बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फ्लाईओवर बना रहे हैं वहाँ पे, दैट इज़ ऑन गोइंग. और उस वजह से मॉर्निंग की ट्रेन्स थोड़ी डिले हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ वन वे रूट. एंड और भी ज़्यादा ट्रैक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रैक्स, ताकि एक पॉइंट पे मल्टीपल ट्रेन्स एक ही वक्त पर मूव कर पाए. और इस वक्त तो मल्टीपल ट्रेन्स नहीं कर पाती, एट अ टाइम एक ही ट्रेन चल सकती है. बट द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट, एंड लेट्स बी एस्पिरेशनल. Playing one of my favorite tracks, Kangna, but the acoustic mix. And this song has such a beauty. Enjoy it. Back-to-back tracks. Main hu Astra, sunte rahiye Radio Sonar 90.4 FM. Ye hai har dil ki dhadkan.

0: जे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: अजी वेलकम बैक जी, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे शो चल रहा है, हंगामा ड्रामा इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ। एंड अभी वक्त है 1 मिनट फैक्ट का और आज का फैक्ट इज अबाउट हमारी बहुत ही ग्रेसफुल गॉर्जियस माधुरी दीक्षित, जिन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है देवदास मूवी में, दैट इज चंद्रमुखी। और फैक्ट ये है कि शी वॉज कंसीविंग उस पॉइंट पे, शी वॉज प्रेगनेंट वाइल परफॉर्मिंग इन अ 30 किलोग्राम्स लहंगा, यानी कि जो वो चक्कर काट रही हैं, कथक इन्फ्यूज जो डांस कर रही हैं, वो हर किसी जो भी गाने उन पे फिल्माए गए हैं इन द मूवी देवदास, स्पेशली ये गाना, इसमें जो इन्होंने लहंगा पहना हुआ है, कथक का जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, वो 30 किलो का था एंड शी वॉज हैविंग अ बेबी इन हर वूम्ब। एंड ऑनेस्टली दिस शोज हाउ ग्रेसफुली एक औरत और स्पेशली एक आर्टिस्ट अपने आप को कैरी करता है, चाहे क्या भी कठिनाई हो, वो प्रोफेशनलिज्म वहीं का वहीं है।

मैं हूँ स्टार सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन और कुछ ही ट्रैक्स के बाद वापस आके आपको बताएंगे कि आज का टॉपिक क्या है. तो बस यूं ही और यू वापस आए.

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

ये हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है और आज का टॉपिक कुछ खास है, कुछ अलग है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पैशन. We are definitely together up to 4 in the evening. But अभी की बात करें तो passion oriented careers के बारे में आज बात होगी. क्या actually हम जो personal interest, career और personal interest को एक align करने की कोशिश करते हैं, क्या वो worth it है? और जैसा कहा जाता है कि भाई artist passion से जेब नहीं भर सकता, क्या ये सच है? There are a lot of things that we have to talk about. So buckle up and सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. कुछ ही ट्रैक के बाद और भी बातें होंगी. स्टे ट्यून्ड टू द हॉरस फ्रीक्वेंसी. मैं हूं आस्ट्रा. सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़े मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि आज हम पैशन ओरिएंटेड करियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वी टॉक्ड अबाउट कि लोग कहते हैं कि स्टारविंग आर्टिस्ट एक फिनोमेना है जो एक्चुअली एक मिथ है, उसके बारे में भी बात होगी। पर सबसे पहले बात करते हैं कि पैशन ओरिएंटेड करियर्स है कौन से। सबसे पहले तो सोशल वर्क, जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए या एक्टिविज्म के लिए। ये जो भी करियर्स हैं ये पैशन ड्रिवन होते हैं कि आप में वो पैशन होना चाहिए कि हम सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे टीचिंग में हो, एजुकेशन हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में वो पैशन हो कि मैं लोगों को कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, मैं एक एजुकेटर बनना चाहता हूँ। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फील्ड है पैशन ड्रिवन, जो अभी के टाइम पर तो काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, दैट इज़ क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन की। अगर बात करें, चाहे हम आर्टिस्टिक क्रिएशन की बात करें, स्टोरी टेलिंग हो, डिजाइनिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, या इसके अलावा एडिटिंग की हम बात करें, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ये सारे जो आर्टिस्टिक चीजें हैं इनमें आपका पैशनेट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप पैशनेट हैं तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका वो आर्ट दिखे लोगों तक, उसके लिए वो पैशन होना जरूरी है। चाहे हम किसी भी मूवी की बात करें, द डायरेक्टर्स दे हैव द पैशन टू शो अ स्टोरी टू द ऑडियंस, तो उस पैशन की वजह से वो अपना करियर और पैशन को अलाइन करके अपना करियर बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये भी कहते हैं कि आसान है भाई, इट्स वेरी इजी, कि अगर आप पैशनेट अपने पैशन की तरफ करियर बनाएंगे, एक अलाइन करके करियर बनाएंगे, तो इट्स इजी फॉर यू। बट ये बात नहीं है, इट्स अ मिथ, इट्स अ स्टीरियोटाइप, बिकॉज इट्स नेसेसरी कि आप चाहे पैशनेट ओरिएंटेड में करियर में काम करें या नॉन पैशनेट करियर में काम करें, इट्स वेरी नेसेसरी कि आप हर किसी करियर में, हर किसी जगह आप मेहनत करें और उतनी मेहनत करें जितना वहाँ डिमांड हो। एंड इट्स वेरी नेसेसरी के, और इट्स हर जगह नेसेसरी है, कि ऐसा कुछ नहीं होता कि मेहनत के बगैर या किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मिलती रहेगी, बट इन्फॉर्मेशन के साथ बैक टू बैक ट्रैक्स। और अभी द ट्रैक दैट इज प्लेइंग ऑन द बैक साइड, दैट इज जुगनी, एंड ये सिर्फ दो दिन पहले रिलीज हुआ है। दिस इज द कास्ट इज जैकलीन फर्नांडिस, सोनू ठुकराल एंड द सिंगर इज बी पराग। एंड अगर बात करें इस ट्रैक की, सिर्फ दो दिन पहले रिलीज हुआ ट्रैक, अभी इट हैज गैदर्ड 14 मिलियन प्लस व्यूज ऑन यूट्यूब। दैट्स अमेजिंग।

0: taste deep.
1: I don't know what he wants to say, but I want to say that you can call 8899-0904 and aap WhatsApp kar sakte hain, call kar sakte hain, message kar sakte hain aur apni baat, apne vichar hum tak pahuncha sakte hain.
2: Listen up, girl.
0: Ek main aur ek tu hai.
1: आए आए क्या बोला है, सही बोला है कि एक आप हैं एक मैं हूँ और क्या ही चाहिए, आप और मैं हैं और बस ये है कि 8899-0904 इस नंबर है, यू कैन कॉल मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप और आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस क्या है या जो आज का टॉपिक है दैट इज पैशन ड्रिवन करियर्स, पैशन ओरिएंटेड करियर्स, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट. या आपके दिल में कोई बात है, किसी को कोई चीज डेडिकेट करनी है तो जरूर, वी आर ऑलवेज हियर. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार. मैं हूं अस्त्र, सुनते रहिए रेडियो सुनार. मैं बस यू कही और यू वापस आई.

0: out of here.
1: You see. Keep running, homeboy.
2: Hi, मैं हूँ आरजे सू.
3: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा.
4: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ.
5: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन.
2: हाय, मैं हूँ आरजे सू.
3: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा.
4: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ.
5: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन.
2: हाय, मैं हूँ आरजे सू.
3: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा.
4: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ.
5: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा और यू आर लिसनिंग टू द हॉरस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर द हॉरस फ्रीक्वेंसी 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन रेडियो सुनार पे शो चल रहा है हंगामा ड्रामा। एंड आज का जो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पैशन ओरिएंटेड करियर्स। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ करियर्स टिल नाउ, बट देर इज वन मोर जो काफ़ी रिस्की भी है, बट इफ यू गो वेल इन इट देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की। मार्केट को एनालाइज करना जो और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, बाय करना, सेल करना, देयर इज सो मच मोर टू इट, बट इट्स बेसिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ पैशन। यानी कि एक बंदे को अगर पैशन नहीं है बॉस, तो उसका अगर नुकसान हो जाता है तो वो विड्रॉ कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। द पर्सन विल बी लाइक कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली बहुत पैशनेट होते हैं ट्रेडिंग के, इन्वेस्टिंग के। इसके अलावा ऐसा ही एक फील्ड है दैट इज हेल्थ वेलनेस एंड फिजिकल फिटनेस। किसी का पर्सनल ट्रेनर बनना, कोच बनना, या न्यूट्रिशनिस्ट बनना, डाइटिशियन बनना, शेफ बनना। एंड देयर इज अ लॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट शेफ, बीइंग अ शेफ, स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट। That is the biggest thing that is going on in Kashmir. अगर कश्मीर की बात करो, अशुगमत क्या दिखे, हर किसी जगह पे कोई ना कोई रेस्टोरेंट हमें देखने को मिल ही जाएगा। कोई नया कैफे, कोई नया रूफटॉप कैफे, कोई पेंटिंग कैफे, कोई कुछ बहुत कुछ चल रहा होता है भाई इंटरनेट पे। बट इस बारे में बात करें तो अभी ये जो कैफे कल्चर है काफ़ी बढ़ चुका है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पैशनेट ड्रिवन कल्चर। अब पैशनेट ड्रिवन कल्चर्स में आपको सक्सेस रेट कितनी मिलती है, क्या है, कौन से ऐसे फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है जो लोगों को दिए जाते हैं, उसके बारे में बात होगी। पर कुछ ही ट्रैक्स से बात होता है, के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और अगर आप देखिए आप जो सुन रहे हैं, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो 8899904904 इज द नंबर एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स एंड डेफिनेटली यू कैन कॉल मी एंड 8899904904 इज नंबर, व्हाट्सएप मैसेज टेक्स्ट कॉल एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस शो। मैं हूँ आस्ट्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम की हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक। द हॉरस फ्रीक्वेंसी पे शो चल रहा है हंगामा। मैं हूँ आरजे असरा और देखिए, हर चीज के स्टीरियोटाइप्स हैं। आप ये मानते हैं एक ऐसी चीज, स्टीरियोटाइप एक ऐसी चीज होती है बाय द वे, कि आपको किसी ना किसी चीज के बारे में एक मिसकंसेप्शन होता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड। और आज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के टॉपिक के, स्टीरियोटाइप्स, दैट इज पैशन ड्रिवन करियर, के लोग क्या कहते हैं, जो वो चार लोग हैं वो क्या कहते हैं। वो चार लोग ये कहते हैं कि जो आर्टिस्टिक स्टार्विंग मिथ है, यानी कि जो भी क्रिएटिव या पैशन ड्रिविंग फील्ड में काम करना चाहते हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये है कि पहले ऑब्वियसली व्हेन यू बिल्ड योर करियर तो वहाँ कुछ मुश्किलें ज़रूर आती हैं, अनकॉम्पिटिटिवनेस होती है, बट एक पॉइंट पे जब आप अपना डिग्री मानो या अपना जॉब में एक्सपीरियंस ले लेते हैं, देन यू आर ऑलवेज एट अ बेटर प्लेस। इसके अलावा जैसे बोलते हैं कि भाई कंटेंट क्रिएशन क्या है, ये यूट्यूबर है बट असली जॉब क्या करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंकर है या क्या है। सो जो भी पैशन ड्रिवन करियर्स हैं तो उसे हॉबी के एक्विजिशन में लिया जाता है, एक रियल जॉब नहीं देखा जाता। इसके अलावा ये सोचा जाता है कि भाई फ्रीलांसिंग है या पैशन करियर है तो फ्रीलांसिंग करता होगा, एंटरप्रेन्योरशिप है तो कितना ही स्टेबिलिटी होता होगा, बट लोग ये नहीं जानते कि एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को मिलेनियर्स और बिलियनेयर्स में कन्वर्ट किया है। और एक और मिसकंसेप्शन, दैट इज द इजी आउट मिसकंसेप्शन, जो कि मैंने इससे पहले भी बात की इस बारे में, और हम थोड़ी और बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ बात करने के लिए हैं। कि और इस बारे में ये बात है कि जो भी आप काम पसंद करते हैं, द वर्क यू लव, इट इज ईजियर टू वर्क, ऐसी बात नहीं है। मे बी यू जस्ट डू इट आउट ऑफ लव, आपको थोड़ा बहुत ईजी लगे फॉर द स्टार्ट और आप बस करना चाहते हैं तो इसीलिए ईजी लग रहा है, बट अगर देखा जाए तो हर किसी काम में मेहनत लगती है। अभी की बात करें तो आई लव टू टॉक टू पीपल, आई लव टू टॉक टू यू गाइज, बट अगर अब बात करें तो इसमें भी मेहनत लगती है। वी हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। अगर एक इंसान, एक आरजे आपसे बात करता है, उसे अपना काम बहुत पसंद है बट उसे भी मेहनत करनी है और करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर बात करें, एक बहुत ही कॉमन जनरल जो अभी स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, और अभी की बात करें तो नीट का रिजल्ट लास्ट नाइट आउट हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, बहुत सारे नहीं हुए हैं, और कुछ जो स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं दे आर वेरी टेंस्ड अबाउट देयर करियर और कोई भी आर्ट्स फील्ड में नहीं जाना चाहता। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ स्टीरियोटाइप कि जो लोग आर्ट्स लेते हैं, जो लोग फिटनेस, सोशल केयर या ऐसे रोल लेते हैं जो स्टेम में, टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, लॉजिक, साइंस में नहीं आते, दे आर लेस इंटेलेक्चुअल। बट ऐसी बात नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर चीज में मेहनत लगती है। भाई ये उनसे पूछिए जो मेहनत करने की कगार पे होते हैं। सो आज हम ठान लेते हैं कि चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, यूट्यूब हो, डिज़ाइनिंग हो, आर्ट हो, डाइटिशियन हो, पर्सनल ट्रेनर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आर्टिशियन हो, जो कुछ भी हो, हर चीज़ में मेहनत लगती है और हर जॉब, हर प्रोफेशन की इज्जत करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मसरा सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं जल्दी से बताइए। 8899049 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं मसरा सुनते रहिए रेडियो सुना।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। एंड देखिए, हम अभी पैशन ड्रिवन करियर के बारे में बात कर रहे थे, बट देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर पैशन लाइक अ बिजनेस। अभी की बात करें तो यू हैव टू सी कि मार्केट डिमांड कैसा है, पैशन के साथ साथ मार्केट डिमांड क्या है, उसके हिसाब से यू हैव टू वर्क और अपने स्किल्स वैसे ही आगे बढ़ाने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके अंदर ऐसे स्किल्स ज़रूरी होने चाहिए जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं मनी जेनरेट हो। उसके अलावा आजकल के डिजिटल ज़माने की वजह से आपको मार्केटिंग, अकाउंटिंग, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो यू कैन लैग बिहाइंड। और हमेशा एक ही सोर्स पे नहीं रहना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो फ्रीलांसिंग से आप साइड बाय कुछ कर सकते हैं, या आप लोगों को सिखा सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, या आप कंसल्टिंग कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, क्योंकि हमें बस रुकना और थकना नहीं है। अगर पैशन है तो पैशन विल ड्राइव यू सो मैड एंड हार्ड अबाउट इट दैट यू विल मेक समथिंग गुड अबाउट योर लाइफ। अब देखिए, आज का टॉपिक तो ख़त्म होता है पर हमारा साथ रहिए। अभी कुछ देर बाद आपको पता चलेगा आज की क्या है स्पोर्ट्स की अपडेट। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार, क्योंकि कुछ ही ट्रैक के बाद गेम आज शुरू होगा। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

वेलकम बैक टू शो हंगामा सेगमेंट गेम ऑन, जहां मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट। और आज का अपडेट कुछ खास है क्योंकि इट्स अबाउट आर वेमेन। सबसे पहले हम बात करेंगे पीवी सिंधु, दैट इज शी इज़ द टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, जो एक्चुअली सेमीफिनालिस्ट में पहुंच गई है जापान ओपन कॉन्टेस्ट 2026, दैट इज हेल्ड इन टोक्यो। इसके अलावा वुमेन्स क्रिकेट के बारे में बात करें तो वुमेन्स क्रिकेट टीम ने हिस्ट्री बना दी है, बस 270 रन से जीत लिया है अगेंस्ट इंग्लैंड एट द टेस्ट मैच। एंड क्रेजी वुमेन आर डूइंग फैबुलस एंड क्रेजी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेशली अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ की बेटियाँ बाकी बेटों से कम है क्या। मैं वास्तव सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन। अभी कुछ देर बाकी है, यू कैन टॉक टू मी, और कुछ देर बाद हमारा और आपका सफर खत्म होने वाला है, तो यूज दिस टाइम। मैं वास्तव सुनते रहिए रेडियो सुना।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4।

जाना तो है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जाना है बस, 4 से पहले 4 बजे हमारा टाइम ख़त्म होता है और आज टाइम ख़त्म होता है तो कल फिर से शुरू होगा क्योंकि कल सैटरडे है, वीकेंड आ रहा है और हफ्ते में 4 शनिवार होने, देखिए ये अंदर की फीलिंग आती है कि भाई हफ्ते में 4 शनिवार हो, बट है नहीं, बट एक है, उसे हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और संडे की आने की खुशी में जम के परफॉर्म करेंगे। So this is Saturday night and कल है Saturday night, आज है Friday night, जुम्मे की रात है और आज की ये बात है कि अभी के लिए बस इतना ही। शो हंगामा was all about this, this was all about me and signing off for today, over and out। अपना ख्याल रखिए, अपनी लाइफ में क्रेजी चीज़ें करते रहिए, मस्ती, फन, एंटरटेनमेंट, जो कुछ भी है वो करते रहिए। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM।

0: आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

beats with Archie Diva only on Radio Channel 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ू।
4: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
6: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM हर दिल।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में

0: हर दिल की धड़कन
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
2: करार आ जाए
0: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
2: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: 90.4 FM.
1: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
6: मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड

0: बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
2: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम।
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4
3: एफएम।
5: रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है। कहते यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना क्योंकि

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: जी कष्टी जी।
1: चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प प म रे

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार। ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुद्धन तीर भी टक्कर, क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार।
1: हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: चाहूं भी शोर बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा।

हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू

0: था यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: है।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।